0: आणि आता काही क्षणातच आपण हिंदी समाचार ऐकणार आहोत दिल्ली केंद्राहून दिले जाणारे. पण त्या अगोदर काही काही वेळेला असं होतं की ह्या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या श्रोत्यांची नावं नंतरच्या कार्यक्रमात सांगायची राहतात, कधी कधी, नेहमी नाही. पण श्रीप्रकाश वाघ, त्यानंतर कल्पना माइंडकर, प्रेरणा कुलकर्णी, त्यांनी असं सांगितलंय की मी आपला कार्यक्रम रोज ऐकते पण सकाळची डबा बनवण्याची गडबड असल्यामुळे मेसेज करायला जमत नाही. मी म्हटलं तसं की तुमच्या भावना आमच्यापर्यंत पोहोचतात. वर्षा काटकर, आर्यन सोमवंशी, त्यानंतर आपल्याला मेसेज आहे सुहास सरवटे यांचा, प्रभाकर बोराडे यांनी मेसेज केला आहे, वीणा नाडकर्णी यांनीही मेसेज केलेला आहे, वैष्णवी खुटले, तिलोत्तमा यांचाही आपल्याला मेसेज आहे, तिलोत्तमा वेरळकर, त्यांनी सुद्धा हेच सांगितलंय की सकाळची गडबड असते त्यामुळे मेसेज नाही करायला मिळत. आम्हाला अगदी कल्पना आहे या गोष्टीची, पण तुमचा सहभाग कायम आमच्या बरोबर असतो आणि तुम्ही जोडलेलेच असता आमच्याशी ह्याची सुद्धा आम्हाला कल्पना आहे, त्यासाठी मनापासून धन्यवाद. आणि आता आपण हिंदी समाचार ऐकणार आहोत. 6:05 भेटूया आपल्या रेनबो फंडेच्या पूर्वार्धामध्ये. वंदन या कार्यक्रमात आता इथेच थांबतो आहोत. ऐकत रहा 107.1 MHz आकाशवाणी मुंबई FM रेनबो वाहिनी आणि न्यूज ऑन AIR या ॲपवर आपण हे कार्यक्रम ऐकतो आहोत.
1: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्युझिकली युअर्स.
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है.
3: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास. आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूँ. भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है.
2: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है. श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की. बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई. श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है. इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी. विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है. श्री जयशंकर ने कल अपनी 2 दिन की बहरीन यात्रा समाप्त की. यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की. इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन व्यक्त किया. प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की. यह बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा की अध्यक्षता में

सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं, तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन 2026 में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथा समय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेन देन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमरीका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
3: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। बंदास गुप्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
4: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हैं। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया के उत्कृष्ट

0: श्रेष्ठ स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमरीकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रक द्वारा भारत में AI तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट स्टेरिस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ निश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत 1 जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और इसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
3: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से

0: निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमेरिका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में तीन व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमेरिका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
2: अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अमेरिका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमेरिका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तर्कश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साख का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार। गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी। 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृह मंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है, भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम, दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश। आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, हेलो, गुड मॉर्निंग. आप सभी का स्वागत आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल पर. सुबह के 8:40 मस्त मुंबई कार्यक्रम शुरू हो गया है. रोशनी यहाँ पर आ गई है. बहुत आजकल घर से जब निकलते हैं टेंशन होती है कि सही से घर से निकल पाएंगे या नहीं, और अगर निकल भी लिए तो वक्त पर और सही सलामत जहाँ पर पहुँचना है वहाँ पहुँच पाएंगे या नहीं. लेकिन आज जिस तरह मुंबई में मौसम का हाल है, ऐसे लग रहा है कि अभी के लिए तो बड़े आराम से हम घर से निकल सकते हैं, और काम की जगह पर स्कूल कॉलेज अगर जाना है तो वहाँ पर भी बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं. मेरा सफ़र भी सुबह का कुछ ऐसा ही रहा, और इतना सफ़र तय करने के बाद अब आपसे मिलने आई हूँ, और आपके साथ जो बातों का और गानों का सिलसिला शुरू होगा वो 11 बजे तक चलता रहेगा. तो आसपास सब कुछ भीगा भीगा सा है, तो ऐसा ही क्यों ना गानों से भी थोड़ा महसूस किया जाए. ये सब कुछ चलेगा रोशनी के साथ ओनली ऑन 107.1 FM रेनबो.

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना। कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। एनरिचिंग लाइफ।

0: जब घर से निकलते हैं बारिश के मौसम में, तब ऐसे लग रहा है पता नहीं हमें कौन छेड़ रहा है, लेकिन हम घर पर ही है, आराम से एक सेफ जगह पर है, बाहर बारिश हो रही है, बहुत ही प्लेजेंट सा जो है एटमॉस्फेयर आसपास है, तब दिल करता है कि चाय और पकौड़े का प्लान बनाया जाए, वड़ा पाव खाने के लिए प्लानिंग की जाती है, कहीं तो घूमने जाए दोस्तों के साथ, एक मॉनसून ट्रिप भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब होता है जब हम आराम से इत्मीनान से अपने ही घर में बैठे होते हैं, लेकिन जैसे ही मानो काम के चलते घर से बाहर निकलना होता है इसी मौसम में, तब एक चीज होना बहुत आम है। जब घर से बाहर निकलते हैं बारिश में, तब क्या होता है, और ये बात कीचड़ से जुड़ी बिल्कुल भी नहीं है, एक ऐसी बात है जो हर किसी के साथ कभी ना कभी जरूर हुई है, और कुछ लोग तो ऐसे भी है जिनके साथ ये बहुत ही ज्यादा आम होता है। क्या है जानेंगे, लेकिन गानों का मजा भी लेना है ना। अगली आवाज है किशोर कुमार और आशा भोसले की।
1: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना, ना।

है मस मुंबई रोशनी आपके साथ है और जितने भी सारे मुंबई के मतवाले राही हमें सुन रहे हैं, घर से निकल गए हो, बारिश होते ही ये एक सिलसिला शुरू हो जाता है ना कि घर से निकलते वक्त बहुत चिंता होती है कि ट्रेन वक्त पर मिलेगी या नहीं। साथ ही घर से निकलने के पहले छाता ढूंढना होता है, वो भी एक बहुत ज़रूरी काम है, कोई बड़ा टास्क है ऐसे लगने लगता है। मिल भी जाता है तो भी हाल तो यही होता है ना कि ऑटो रिक्शा या टैक्सी में बैठते वक्त या फिर ट्रेन में चढ़ते उतरते वक्त ही आधे से ज़्यादा हम वहीं पर भीग जाते हैं। और ट्रेन में चाहे फर्स्ट सीट पर बैठे हो, फोर्थ सीट पर बैठे हो या ट्रेन में खड़े हो, लेकिन कहीं ना कहीं से जो बारिश की बूंदें हैं वो हमें मिलने आ ही जाती है और हमें बहुत दिल से भिगा देती है। तो ये बस मौसम का मज़ा होता है और ऐसे ही मज़ा कहो या फिर इसी तरह से सफ़र करते करते हम पहुंच जाते हैं, लेकिन ये बातें शायद इन्हीं की वजह से बन जाती हैं।

0: ऐसे में क्या करे और क्या हो सकता है। जैसे आज सुबह की बात है, लोकल ट्रेन में सफर करते हुए जैसे ही दादर स्टेशन से आगे ट्रेन बढ़ी, सामने बैठी एक औरत ने लोकल ट्रेन के ऊपर के जो रैक होते हैं उसकी तरफ नज़र घुमाए, झट से चेहरे के जो एक्सप्रेशंस है वही बदल गए। देखकर ऐसे लगा मानो वो कुछ भूल गई है, लेकिन उसने झट से फ़ोन घुमाया, सहेली के साथ बात करते हुए उसे याद दिलाया कि आज वो अपना छाता जो है ट्रेन में ही भूल गई है, और फिर पूछताछ की कि आज के पूरे दिन किस तरह वो बिताने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से या फिर एक हफ्ते भर से जिस तरह बारिश हो रही है, छाते के बिना गुजारा हो ही नहीं सकता। इसलिए बड़ी अच्छी सहेली बनते हुए सारी पूछताछ की, उसे बहुत प्रिकॉशंस दिए गए, और अब सहेली के पास ही है छाता, तो अगले दिन ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन मानो किसी का छाता लोकल ट्रेन में गुम हो जाए तो उसे वापस मिल सकता है या नहीं, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? आपने भी कुछ ऐसा ही किस्सा अपनी आंखों से देखा है, आपने जाना है, सुना है, तो ज़रूर अपनी बातें आप व्हाट्सएप से या फिर फ़ोन कॉल करके मुझ तक पहुंचा सकते हो। तब तक मेरी तरफ से अलग अलग गाने, कुछ ज़रूरी सूचनाएँ, ये सब कुछ चलता रहेगा ओनली ऑन 107.1 FM रेनबो।
1: तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ।
2: अब इंतजार करने की जरूरत नहीं।
3: क्यों?
2: क्योंकि अब आप हमें ऑनलाइन भी सुन सकते हैं।
3: कैसे?
2: प्ले स्टोर में जाकर प्रसार भारती का न्यूज ऑन एयर ऐप डाउनलोड कीजिए। FM रेनबो मुंबई को अपनी फेवरेट लिस्ट में ऐड करके आप हमसे जुड़ सकते हैं 24/7।
4: मैं हूँ सलीम मर्चेंट और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए।
6: आई एम माधुरी दीक्षित एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन FM रेनबो।
7: हाय, आई एम कबीर बेदी एंड यू आर लिसनिंग टू FM रेनबो चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो।
8: नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डीनो मुरिया और आप सुन रहे हैं 107.1 रेनबो FM फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो।

0: व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट

0: क्या ढूंढते हैं, किसे ढूंढते हैं, बारिश के मौसम में बस हमारे छाते को ही ढूंढते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ऐसे किस्से हैं और वाकई उनकी ज़िंदगी में ऐसे होता है कि हर साल हर बारिश के मौसम में कम से कम एक छाता वो गुम कर ही देते हैं। सालों साल यही चलता आ रहा है। आखिरकार उन्होंने ये तय कर लिया है कि वो अपने लिए कोई भी नया छाता नहीं खरीदेंगे, बल्कि घर के ही किसी सदस्य का एक छाता वो है, जब भी ज़रूरत पड़ती है वो लेकर बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसा होता है। और इन लोगों के छाते कहाँ कहाँ गुम हो जाते हैं, कई बार अपने दोस्तों के घर ही वो भूल आते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ पर छोड़ आए, ऑटो टैक्सी यहाँ पर भी भूल जाते हैं। और ऐसी सब जगहों पर कई बार जब हम छाता भूल जाते हैं, आधे से ज़्यादा बार वो छाते मिल भी जाते हैं। लेकिन देखो, यहाँ सभी से जो है छाता शायद मिल भी जाए, लेकिन लोकल ट्रेन में मानो कोई छाता भूल गया तो क्या वो मिलना मुमकिन है या नहीं? या फिर जैसे कुछ देर पहले हमने बात की, उस लेडी की तरह बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल हो, बहुत पक्की सहेली या दोस्त हो, तब जाकर ये वाकई चमत्कार मुमकिन हो जाता है। लेकिन ऐसे चमत्कार वाकई असल ज़िंदगी में भी होते हैं। लेकिन अभी है ना गाना सुनना है, तो सुन लेते हैं लता मंगेशकर और शैलेंद्र की आवाज़ में बॉबी फिल्म से गाना।
1: बाहर से कोई

0: ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

तनिष्क बागची का संगीत है। मुंबई के मतवाले राही एफएम रेनबो पर कार्यक्रम चल रहा है मस्त मुंबई। और रोशनी, अब आपको एक मुंबई की ही एक सच्ची घटना पर आधारित एक बात बताने वाली है। तो हुआ ऐसे कि मुंबई लोकल में सफर करने के बाद, पूरे दिन काम करने के बाद घर के लिए जो है लोकल से अपने घर के लिए रवाना हुए। जब अपने घर के स्टेशन तक पहुँच गए, स्टेशन प्लेटफॉर्म से वो आगे भी बढ़ गए और अचानक से कुछ अधूरा अधूरा सा लगने लगा। कुछ देर बाद याद आया कि लोकल से उतरते वक्त जो है अपना छाता जो ऊपर रैक पर रखा था वो लेना भूल गए हैं। अब क्या करें क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हीं के आसपास रहने वाला एक कलीग जो है, वैसे तो ऑफिस के बाद ज़्यादा उनके साथ बातें होती नहीं है, ना आना आने जाने का वक्त एक जैसा है, फिर भी उस दिन दिल किया कि उन्हीं को फ़ोन करके वो सारी बात बताए। तभी तुरंत फ़ोन लगाया गया, उन्हें सारी बातें बता दी और इत्तेफाक की बात कि उनकी जो कलीग है उस दिन बस उन्हीं के पीछे वाली ट्रेन से जो है सफ़र कर रहे थे, वो वहाँ प्लेटफॉर्म पर पहुँचे। उन्होंने सारे डिटेल्स पूछ ले कि कौन से प्लेटफॉर्म पर वो ट्रेन अभी भी हॉल्ट है, कौन से डिब्बे पर वो बैठकर वो आए थे, वो सारी बातें पूछ ली। वो झट से भागते दौड़ते हुए उस ट्रेन तक गए, वहाँ पर उन्हें वो मानो बाकी उनके लिए ही वो रुका हुआ था, तो वैसे उन्होंने वो छाता लिया और उस तरह उन्हें लगा नहीं था, ये मुमकिन सा नहीं लग रहा था, लेकिन सारी बातें शायद उन्हीं के लिए एक साथ आ गई और उन्हें अपना छाता जो है मिल गया। तो कई बार लोकल ट्रेन में रोज़ सफ़र करते हैं उन दोस्तों ने भी जो हमारे छाते लौटाए हैं, या फिर इन शख्स की तरह कि पता नहीं ये ऐसे मुमकिन ना था कि पता नहीं क्यों फ़ोन लगाया, पता नहीं कैसे वो उस दिन उसी के आसपास के वक्त पर निकले, सारी डिटेल्स पूछ ली और उनके लिए जो है वो वापस सब कुछ ले भी आए। तो बहुत अच्छे अच्छे इत्तेफाक जो है ज़िंदगी में होते रहते हैं।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना। कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। एनरिचिंग लाइफ।
2: अब लोकल ट्रेन की कई बार जो है वक्त का कोई अंदाज़ा नहीं होता, खास तौर पर जब लगातार कई सारे दिनों तक बारिश होती है। ऐसे में कई सारे मुंबईकर आगे चलकर आए हैं और लोगों को बता रहे हैं कि ऐसे में अगर आप कहीं अटक गए हो तो मेडिकल हेल्प चाहिए तो वो उन तक पहुंच सकते हैं। अलग अलग जगह पर उनके नंबर्स जो है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है, हमें ज़रूर मिल सकते हैं। तो मुंबई के मतवाले राही जो है हमेशा एक दूसरे की सहायता के लिए तैयार होती है। छोटी सी छोटी बात है, जैसे कि अगर छाता भी गुम हो जाए या फिर कोई बड़ी समस्या हो, जैसे कि कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, तब भी वो हमेशा जो है एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। तो मुंबई में ऐसा हो रहा है। तो हमारे लिसनर जो पुणे से हमें सुन रहे हैं, सुनील गायकवाड़, उनका कहना है कि शायद मुंबई के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आज पिछले कुछ दिनों से बारिश थोड़ी सी कम है, लेकिन पुणे से कहना है कि लगातार बारिश हो रही है, उसके वजह से बस एक ही गाना जो है उसकी याद आ रही है कि सब नज़ारे जो है वो छुप गए हैं। तो नज़ारे छुप गए हैं लेकिन हमारी बातें जो है अभी भी बाकी है। गाने के बाद यही पर लौट आते हैं, ओनली ऑन 107.1 FM रेनबो। मैं हूँ रोशनी और कार्यक्रम चल रहा है मस्त मुंबई।

मुंबई की लोकल और मुंबई की बारिश, ये दोनों ही अपनी अपनी जगह पर लोगों को बहुत पसंद आते हैं और जब एक साथ वो मिल जाते हैं तब कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही एडवेंचरस होता है, बहुत सुहाना होता है, थोड़ा सा फिल्मी होता है, थोड़ा सा नटखट होता है और बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी से भरपूर होता है। शायद इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने इन दोनों को मिलकर कई सारी कविताएँ लिखी है, उन्हीं में से एक आज आपके लिए। तो मुंबई की बारिश और लोकल के बारे में कहना है तो ऐसे कह सकते हैं, काले बादलों ने शहर को कुछ ऐसे घेरा है जैसे मुंबई की लोकल पर सावन का बसेरा है। बूंदों के रिमझिम में भी रफ्तार वही पुरानी है, हर बोगी में लिपटी यह एक नई कहानी है, हर बोगी में लिपटी यह एक नई कहानी है। प्लेटफॉर्म पर खड़ी भीड़ बारिश का इंतजार करती है, प्लेटफॉर्म पर खड़ी भीड़ बारिश का इंतजार करती है, पर लोकल के आते ही सबकी आंखें जो है प्यार और इंतजार से भर जाती है। भीगे हुए स्टेशन और खचाखच भरी ट्रेनें, यही तो है इस महानगर की असली बेचैनी। बारिश की बूंदों के संग रफ्तार कभी धीमी होती है, पर मुंबईकरों की हिम्मत कभी ना आधी होती है। पटरियों से उठती भाप में एक अनोखा सा नूर है, मुंबई की धड़कन लोकल और बारिश इसका सुरूर है।

बात है, मुंबई की लोकल बारिश, और इस बारिश में जो हमारा रिश्ता होता है हमारे छाते के साथ, वो भी लुक्का छुपी का रिश्ता होता है, वो भी थोड़ा सा लव एंड हेट रिलेशनशिप होता है। और ऐसे कई बार अजूबे ही हुए हैं, ऐसा ही कहना सही होगा, कि लोकल ट्रेन में आपकी छाती छतरी जो है वो गुम हो गई है, वो वापस आपको मिल भी गई है। कुछ लोग जो है बहुत बहुत जद्दोजहद करते हैं

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, यह है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल और अब नजर डालते हैं इस घंटे की सुर्खियों पे। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और इंडोनेशिया के इंडोनेशिया एमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का उल्लेख किया। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि गहन आर्थिक एकीकरण से व्यापार और निवेश के अधिक अवसर खुलेंगे। दोनों पक्षों ने संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को समय पर पूरा करने की भी आह्वान किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं

तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति में निरंतर विस्तार के कारण उपभोक्ताओं के लिए संभावनाएं अनुकूल बनी हुई हैं। अमेरिका ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर हुई कार्रवाई के बाद किए गए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पर कहा कि होर्मुज में ईरान द्वारा निर्दोष नागरिकों द्वारा संचालित वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं। अमरीका के एक अधिकारी ने बताया कि अमरीका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को निशाना बना रही है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अमेरिका के ये ताज़ा हमले समझौते का उल्लंघन है। और समाचारों के अंत में, फुटबॉल में स्विट्जरलैंड कोलंबिया को हराकर 1954 के बाद पहली बार फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुँच गया है। वैंक्यूवर में खेले गए मुकाबले में दोनों टीमें अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सकी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हराया। इसी के साथ समाचारों का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। सुबह सुबह का वक्त है, आप सभी को रोशनी की तरफ से अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एफएम रेनबो पर अब शुरू हो गया है कार्यक्रम नमस्ते भारत। अब पिछले घंटे हमने हमारे मौसम के बारे में, लोकल ट्रेन के बारे में, और ये जब दोनों साथ आते हैं तो क्या क्या चीज़ें हो जाती है, होते होते हम बच जाते उससे, वो सारी बातें तो करती है। लेकिन नमस्ते भारत में आज बुधवार है तो महिलाएं और बाल जगत में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में भी जानते हैं। और कुछ महिलाएं कुछ बहुत ही अलग कर दिखाती है, कुछ ऐसी महिलाओं को भी आज हम याद करेंगे। तो एफएम रेनबो पर रोशनी के साथ ये सारी बातें, और साथ ही साथ 11 बजे तक अब साथ में हूँ, तो बातों के साथ गाने भी जो है वो खास जो है जो आपको बहुत बहुत दिल से पसंद आएंगे, ऐसे गाने मैंने आपके यहाँ आपके लिए जो है लाइनअप किए हुए हैं। उन्हीं में से एक गाना मोहित चौहान और प्रिया पांचाल की आवाज़ में।

0: पोस्टमैन तो हम सभी जानते हैं, लेकिन पोस्ट वुमन के बारे में कभी आपको किसी ने बताया है या आप उनसे मिले हो? चलो आज रोशनी आपको सुनाएगी ऐसी ही एक पोस्ट वुमन की कहानी।
1: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
2: इंटरनेट बैंकिंग,
1: मोबाइल बैंकिंग,
2: व्हाट्सएप बैंकिंग,
1: ईकेवाईसी,
2: एनईएफटी, आरटीजीएस,
1: आईएमपीएस,
2: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
1: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

ऐसे लग रहा है जिस पोस्ट वुमन के बारे में आज हम बातें कर रहे हैं नमस्ते भारत कार्यक्रम में, खास उन्हीं के लिए ही गाना बनाया हुआ है। कितना प्यारा सा गाना था। लेकिन पोस्टमैन का काम क्या होता है? लोगों को उन तक उनकी चिट्ठियां पहुंचाना। लेकिन ये जो पोस्ट वुमन है वो सिर्फ चिट्ठियां नहीं पहुंचाती, छोटे छोटे गाँव में जैसे होता है ना, उनके घर तक जाकर उन्हें सिर्फ चिट्ठियाँ पहुँचाना नहीं, कई बार उनके लिए चिट्ठियाँ खुद लिखना भी होता है, और अगर उन्हें कोई चिट्ठी मिली है तो उन्हें पढ़कर सुनाना भी होता है। अब ये तो पुराने ज़माने की बात हो गई, अब वक्त के साथ बहुत कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर और जुड़ गई हैं। सिर्फ चिट्ठियाँ पहुँचाने तक ये काम सीमित नहीं रहा है इस पोस्ट वुमन का। और ये पोस्ट वुमन किसी बड़े शहर की नहीं है, एक छोटे से गाँव की है, हमारे भारत देश का ही एक छोटा सा गाँव है, यहाँ पर वो पोस्ट वुमन रहती है। क्या क्या करती है, क्या क्या पहुंचाती है और इसका और क्या क्या काम है सब जानेंगे। लेकिन रोशनी चाहती है अभी के लिए हम सभी मिलकर गाना सुने कुछ कुछ होता है फिल्म से, आवाज़ें उदित नारायण और अलका याग्निक की।

0: जब खबर पहुंचाने के लिए सिर्फ चिट्ठियां ही माध्यम है तो इंतजार तो जरूर होगा। और ये जो डाकघर है पहाड़ों के बीचों बीच है और सिर्फ एक गांव के लिए नहीं बल्कि आसपास के कई सारे गांवों के लिए बस एक ही डाकघर है। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें आती हैं और आने से पहले जब पोस्ट वूमेन यहाँ की लोगों तक ये पहुँचाती है उसके पहले बहुत अच्छे से छटाई होती है, क्योंकि जैसे हमने बताया सिर्फ चिट्ठियों तक काम सीमित नहीं है, तो चिट्ठियाँ भी यहाँ पर आती है, कई सारे पार्सल्स होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है वो भी डाकघर आकर ही पहुँचते हैं, उसके बाद वो वहाँ के लोगों तक पहुँचाए जाते हैं, यहाँ तक कि दवाइयाँ भी किसी डिलीवरी ऐप के माध्यम से नहीं तो ये डाकघर का ही काम होता है उन तक पहुंचाना। यानी हमें लग रहा है कि हम बहुत बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन हमारे देश के कोने कोने में कुछ चीजें वाकई तेज रफ्तार से आगे बढ़ी है, लेकिन लोगों तक पहुंचाने के लिए वही पुराने माध्यम का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये संगम बहुत निराला है, बहुत मजेदार सा लग रहा है, जरूर जरूर बातें करेंगे, लेकिन अभी के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
1: वस्तु तथा सेवा कर की सही दर यानी GST रेट से संबंधित सभी शंकाओं का समाधान अब आपके हाथ में।
2: जी हाँ, मोबाइल ऐप GST रेट फाइंडर
1: जो उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर पर निशुल्क,
2: अभी एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर और बहुत जल्द iOS प्लेटफॉर्म पर।
1: यदि आपकी उलझन है कर की सही दर तो अब हो जाइए बेफिक्र, क्योंकि अब आपका हम सफर GST रेट फाइंडर।
2: वस्तु तथा सेवाओं की दरों की पूरी सूची ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोड में,
1: वित्त मंत्रालय का उपयोगी ऐप,
2: तो अभी डाउनलोड कीजिए GST रेट फाइंडर। देश प्रगति के पथ पर,
1: सही कर सही दर।
3: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
4: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
3: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
4: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

मोबाइल ऐप यानी जानकारियों को आपके पास पहुंचाने का आधुनिक माध्यम ऐप रेडियो। जब ये दोनों एक होते हैं तो जाहिर है दुनिया और करीब आ जाती है। आकाशवाणी मुंबई की संवाददाता चैनल और अस्मिता चैनल वर्षों से अपने श्रोताओं के लिए मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, कोंकणी, गुजराती, उर्दू, सिंधी और कन्नड़ भाषा में कार्यक्रमों को प्रसारित करते आ रहे हैं। अब ऐप न्यूज ऑन एयर के डाउनलोड के जरिए आप संवाददाता अस्मिता, एफएम रेनबो और एफएम गोल्ड के जीवंत कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं। तो डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एयर और जुड़िए, संवाद कीजिए आकाशवाणी मुंबई के चारों चैनलों से।

सिर्फ चिट्ठी तक इस पहाड़ी लड़की का काम सीमित नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग कई सारी चीज़ों का इंतज़ार करते हैं, कई सारे समाचारों का इंतज़ार करते हैं। ये भी ये पहाड़ी लड़की घर घर जाकर जो है पहुँचाती है। ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको पेंशन भी इस डाक खाने के ज़रिए ही मिलती है। और सिर्फ पेंशन मिलने तक नहीं, उन्हें बायोमेट्रिक का इस्तेमाल कैसे करना है बड़ी शांतिपूर्वक ये समझाती भी है। उनसे सारे जो प्रोसीजर है वो करवा कर लेती है। दवाइयाँ भी है उसका भी लोग जो है बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, वो भी डाक के ज़रिए ही उन्हें मिलता है। और गांव के जो मुखिया है उनको भी जो भी ज़रूरी लेटर्स मिलने होते हैं ऑफिशियल, वो भी इसी तरह जो है पहुंचाए जाते हैं। यानी छोटी सी बात लग सकती है, और ख़ास तौर पर आज के डिजिटल ज़माने में, लेकिन काम जो है आज भी बहुत ज़्यादा है। और ये पहाड़ी जो है हमारी पोस्ट वुमन जो है सिर्फ एक गांव में नहीं, आसपास के कम से कम 4 से 5 गांव के लिए इतने सारे काम कर रही है। तो इस डाकिया का बहुत सारे लोग जो है बेसब्री से इंतज़ार करते हैं हर रोज़।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

ऐसे ही जो बहुत दूर रहते हैं लेकिन उनके दिल की बात चिट्ठियों के माध्यम से जो पहाड़ों में हम तक पहुंचाती है या फिर ऐसा कहे कि वहाँ के लोग उन तक पहुंचाती है, वो एक पोस्ट वुमन है। और वो सिर्फ एक ही गांव में नहीं, आसपास के कई सारे गांव से जुड़ा वो एक ही डाकघर है। और वहाँ से चिट्ठियों के साथ साथ बहुत अलग सारी चीज़ें भी पहुँचाई जाती है, बहुत सारे काम किए जाते हैं। और ये सब करने के लिए जैसे मैंने कहा कई सारे गांव में जाना होता है तो रास्ता जो है बहुत ज़्यादा लंबा होता है और उतना ही कठिन भी। लेकिन अगर हम अपने नज़रिए से देखें वही कठिन रास्ता हमें खूबसूरत भी लगेगा, क्योंकि अलग अलग गांव जाने के लिए छोटे छोटे पुल बनाए गए हुए हैं और पुल के माध्यम से हर रोज़ उस पोस्ट वुमन को जो है सफ़र करके दूसरे गांव में जाना होता है। सर्दियों के दिनों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है और बर्फ में चलना, कदम आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस मुश्किल समय में भी कदम आगे बढ़ाते हुए वो लोगों के घर तक सारी ज़रूरी चीज़ें जो हैं पहुंचाती है। आसपास जैसे ही थोड़ी सी बर्फ़ कम हो जाती है बहुत खूबसूरत जो है फूल ही फूल नज़र आती है। लेकिन ये सब जैसे मौसम बदलता है, वक्त बदलता है, लेकिन काम जो है बिल्कुल थमता नहीं। तो ऐसी कई सारी महिलाएँ हैं जो शायद उनकी बातें, उनका काम हर रोज़ हम तक नहीं पहुंचता, लेकिन ऐसे कभी कभार उनकी कहानी हमें सुनने मिल जाती है तो दिल को सुकून भी मिलता है और बहुत ज़्यादा प्रेरणा भी। तो ऐसे ही लंबा रास्ता वो तय कर रहे हैं, मैंने भी आज का जो मेरा सफ़र है वो पूरा कर लिया है। तो रोशनी आज के लिए आपको टाटा गुड बाय कह रही है। देखते हैं अब आपको मिलने 11 बजे कौन आ रहा है, लेकिन मेरी और आपकी मुलाकात बहुत जल्द ओनली ऑन 107.1 FM रेनबो। तब तक के लिए खुश रहो, मौसम में अपने तबीयत का बहुत अच्छे से ख्याल रखना और हर दम सुनते रहना FM रेनबो। टाटा गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम रेनबो और समय हो चुका है अब तक के कुछ मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे बड़े मंदिर हैं। इसमें पत्थरों पर रामायण के दृश्य उकेरे गए हैं। भारत और इंडोनेशिया ने प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्वार के लिए कल एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति में निरंतर विस्तार के कारण उपभोक्ताओं के लिए संभावनाएं अनुकूल बनी हुई हैं। और समाचार में आ गया, अमरीका ने ईरान पर ताज़ा हमले किए हैं। ये हमले हॉर्मोज जलद मरू मध्य में तीन व्यापारिक जहाज़ों पर हुई कार्रवाई के बाद किए गए हैं। अमरीका के केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पर कहा कि हॉर्मोज में ईरान द्वारा निर्दोष नागरिकों द्वारा संचालित वाणिज्यिक जहाज़ों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अमरीका के ये ताज़ा हमले समझौते का उल्लंघन है। और समाचार के अंत में, फुटबॉल में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को हराकर 1954 के बाद पहली बार फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। वैंकूवर में खेले गए मुकाबले में दोनों टीमें अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सकीं। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हराया। प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम के लिए बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी।

हाँ जी, हमारे बंधु सखाओं सभी को हम वेलकम करते हैं 107.1 FM रेनबो पर। शर्मीन संग शामिल अगर हो चुके हैं तो व्हाट्सएप करके हाजिरी लगाइएगा 8657661071, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। गुड मॉर्निंग आपको। और ये गाना आपने सुना कॉकटेल इस फिल्म से, नीरज श्रीधर, कविता सेठ की आवाज़ें थी, इरशाद कामिल ने इसे लिखा, प्रीतम की कॉम्पोजिशन। और जी ब्रेक फ्री, जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता, जिन्होंने पहली बार ट्यून इन किया है उनको बता दें कि ब्रेक फ्री एक ऐसी जगह है जहां हम उन चीज़ों से आज़ाद होने की बात करते हैं जो हमें एक तरह से रोक रही है, पीछे रख रही है। और आज का हमारा टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बंधु सखा के नाम ही है लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, ब्रेक फ्री फ्रॉम वन साइडेड फ्रेंडशिप्स। काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा तो मैंने सोचा क्यों ना ले ही लेते हैं इस टॉपिक को। आप भी बताइएगा अगर इस तरह की फ्रेंडशिप आपकी रही है, वन साइडेड फ्रेंडशिप। वन साइडेड लव के बारे में तो बहुत ज़्यादा बातें होती है लेकिन वन साइडेड फ्रेंडशिप का दुख भी अपनी जगह है जो ज़्यादा बताया नहीं जाता। हम सब की ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा दोस्त ज़रूर आया है जिसे हम हमेशा पहले मैसेज करते हैं, जिसका हमेशा हम सबसे पहले हाल पूछते हैं, जिसके लिए हम वक्त निकालते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें एहसास होता है कि पूरी दोस्ती के जो एफर्ट्स हैं वो सिर्फ एक तरफा ही है। इसी के बारे में अभी आज हम बात करेंगे ब्रेक फ्री में। मीनवाइल आप भी अपनी कहानियाँ, आपके एक्सपीरियंसेस मुझको भेजिएगा 8657661071 पर। अभी के लिए दोस्तों से प्यार किया किया लेकिन अगर एक तरफा किया तो कैसे इससे ब्रेक फ्री होना है वो बताएंगे ज़रूर। आनंद बख्शी साहब ने इसे लिखा, आर डी बर्मन जी की कॉम्पोजिशन, उषा उत्थुप गाएंगी, शान फिल्म से आ रहा है ये गाना। बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 FM रेनबो पर, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।

0: करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना। कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। एनरिचिंग लाइफ।

यारी को यारी रहने दो, ईमान मत बनने दो, ना ही उसको अपनी पूरी जिंदगी बना दो। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप और ब्रेक फ्री ये प्रोग्राम चल रहा है। जंजीर फिल्म से सुना आपने ये गाना, मन्ना डे साहब की आवाज थी, गुलशन बावरा ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की कॉम्पोजिशन। और आज ब्रेक फ्री में हम बात कर रहे हैं वन साइडेड फ्रेंडशिप की जंजीरों से ब्रेक फ्री होने की। हाँ जी, वन साइडेड लव की तो बहुत सारी बातें कर ली, आज बात करते हैं वन साइडेड फ्रेंडशिप की। आज इसी बारे में हमारी जो बातें, और मैंने आपसे भी पूछा है कि इस तरह का एक्सपीरियंस आपको भी

अगर आया है तो आप मुझे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिएगा 8657661071, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो पहले तो कैसे पहचाने कि दोस्ती जो है वो वन साइडेड बन चुकी है? हम ऐसी दोस्ती को इतनी देर तक क्यों पकड़े रहते हैं और कब खुद को चुनना जो है वो सेल्फिश नहीं होता, ये हमने डिसाइड कर लेना चाहिए। बल्कि ज़रूरी होता है कि इस तरह के जो रिलेशन होते, सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं कोई भी हो, तो उसे जल्दी से जल्दी निकला जाए ताकि आप जो हैं वो फिर सामने वाला आपको सेल्फिश न कहे। तो बने रहना इस तरह के सिचुएशन में, और यू नो हो सकता है कि आज जब हमारी ये सारी बातें हो रही हैं वन साइडेड फ्रेंडशिप को लेकर, तो आप लोगों में से भी कुछ होंगे जो अब तक तो पूरा बलिदान की देवी क्यों देवता भी बन चुके होंगे फ्रेंडशिप में, है ना। लेकिन आज जब हम इस टॉपिक को उठा रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो शायद आपका नज़रिया भी चेंज हो जाए। मैं यहाँ पे आपकी जेन्युइन जो फ्रेंडशिप है उसको तोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे उस टॉक्सिक कह सकते हैं, क्योंकि आप उसमें खपे जा रहे हैं एक तरफा ही, आप ही सारा इनपुट दे रहे हैं और आप ही ये सोच रहे हैं कि ये फ्रेंडशिप बनी रहे। ये जो गाने हैं ये सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं और सच में ऐसी दोस्ती होती भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भी मुझको तो अपने टॉपिक पे रहना पड़ेगा ना, क्योंकि आज मैंने लिया है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि सारा कुछ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ही चल रहा है, अच्छा अच्छा ही बोल रहे हैं। इस तरह के जो सिचुएशंस होते हैं उससे निकलने की बात भी हमने करनी चाहिए, उसको भी एड्रेस करना चाहिए हम, और इसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों के मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं, मैं उसको रीड करती हूँ एक एक करके। फिलहाल के लिए आए एक और गाना, दोस्ती यारी के नाम, तेरा यार हूँ मैं। आए हाय, होते हैं ऐसे दोस्त, अच्छे वाले भी होते ही हैं जिसमें दोनों जो है वो अपना इनपुट दे रहे होते हैं। सोनू के टीटू की स्वीटी से आएगा ये गाना, अरिजीत सिंह गाएंगे, कुमार ने लिखा, रोचक कोहली की कॉम्पोजिशन।

0: तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ।
1: अब इंतजार करने की जरूरत नहीं।
2: क्यों?
1: क्योंकि अब आप हमें ऑनलाइन भी सुन सकते हैं।
2: कैसे?
1: प्ले स्टोर में जाकर प्रसार भारती का न्यूज ऑन एयर ऐप डाउनलोड कीजिए। एफएम रेनबो मुंबई को अपनी फेवरेट लिस्ट में ऐड करके आप हमसे जुड़ सकते हैं 24/7।
3: हाय, मैं हूँ सलीम मर्चेंट और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
4: कुछ करिए नस नस मेरी खो दे, हाय कुछ करिए।
5: I am Madhuri Dixit and you're listening to me on FM Rainbow.
6: Hi, I'm Kabir Bedi and you're listening to FM Rainbow channel of All India Radio. We're an all-time
7: love. Namaste dosto, main hu Dino Murea aur aap sun rahe hain 107.1 Rainbow FM from All India.

0: कॉस्मॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

मतलब सब कुछ लिख दिया है कि किस तरह का एक दोस्त होना चाहिए, और केके की खूबसूरत आवाज़, केके का जो एल्बम है पल, उससे सुना आपने ये गाना। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप, और जी ब्रेक फ्री ये प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम बात करें आप लोगों के मैसेजेस में रीड कर रही थी और आप शायद थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं, या वो जो वन साइडेड लव का दर्द इतना है कि आप लोगों को जो मैंने कहा कि वन साइडेड फ्रेंडशिप की हम बात कर रहे हैं वो आप समझ गए कि वन साइडेड लव, सब अपनी एक तरफा प्यार की कहानियां मुझको भेज रहे हैं, ऐसे नहीं कीजिए ये पूरा बिल्कुल ही अलग टॉपिक हो जाएगा, उसको हम किसी और दिन लेंगे। आज हम वन साइडेड फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं। दोस्ती कभी भी जो है वो हिसाब किताब का रिश्ता नहीं होती, ये हमको पता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पूरी दोस्ती का जो बोझ है सिर्फ एक इंसान ही उठा रहा है ना, सारा कुछ उसको चलाने का काम जो है वो आप ही कर रहे हैं। अगर हमेशा आप ही मैसेजेस करते रहें, आप ही समझते रहें सिचुएशन को और सामने वाले को, आप ही समझौता करते रहें और सामने वाला सिर्फ तब याद करता है जब उसे ज़रूरत होती है, तो एक बार खुद से आपने पूछ लेना चाहिए कि क्या मेरी वैल्यू कुछ है भी उसकी लाइफ में, या मैं सिर्फ जब अवेलेबल हूँ इसीलिए, मतलब उसको जब ज़रूरत होती है तब वो अवेलेबल होता है और वो तब मुझसे मिलता है, मिलती है। तो ये किसी भी रिश्ते के लिए कह लें आप, तो जो लोग सच में आपकी परवाह करते हैं वो आपको ये महसूस होने देंगे कि आप उनकी लाइफ में कितने मायने रखते हो। अच्छी दोस्ती हमेशा आपसी परवाह, सम्मान और बराबर के एफर्ट्स पर ही टिकी होती है। सो इसीलिए जो है आपने खुद ने भी थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए, और इसमें ये नहीं आता कि अरे ये तो इतने सालों की हमारी दोस्ती है, आप थोड़ा सा सोचिएगा पीछे मुड़कर कि ये इतने सालों की दोस्ती है वो किस वजह से और किसकी वजह से टिकी हुई है। आपके सिर्फ आपके एक तरफा एफर्ट्स की वजह से अगर है, और यू नो आप मतलब आपको कुछ उससे नुकसान नहीं हो रहा, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप चाहते ही हैं बलिदान देना और वो दोस्ती टिकाना तो एक बात और है, लेकिन आप एकदम ही उस वजह से फिर ये भी कुड़ते रहते हो कि पता नहीं मैं ही क्यों करूँ वो करूँ, तो फिर इस तरह की अगर आप सिचुएशन में हैं तो उससे अच्छा है कि वो दोस्ती को आगे कंटिन्यू रखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। शो जो है वो हम कंटिन्यू रख सकते हैं, दोस्ती के गाने जो हैं आपको हम सुना सकते हैं कि आपको एक आइडिया आ जाए कि किस किस तरह के दोस्त होने चाहिए और दोस्ती का मतलब क्या है। फिर आप अपनी दोस्ती की तरफ देखिए, दोस्त की तरफ देखिएगा कि वो सच में उस सारे जो क्राइटेरियाज हैं उसमें फिट होता है या सिर्फ आप ही हो रहे हैं। किशोर कुमार साहब गाएंगे इसे, दोस्ताना से आ रहा है ये गाना, आनंद बख्शी साहब ने लिखा, रफी साहब भी साथ देंगे। गाना तो कमाल का है, दोस्ती का पता नहीं।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मो कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: बिल्कुल म्यूजिकल योर्स, आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल है आप ब्रेक फ्री इस प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं वन साइडेड फ्रेंडशिप से ब्रेक फ्री होने की। एक वन साइडेड दोस्ती से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों से हार मान चुके हो बिल्कुल भी, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब आप उन रिश्तों को चुन रहे हैं जहाँ आपके टाइम की, आपकी इच्छाओं की, अच्छाई की, इच्छाओं के साथ साथ अच्छाई की भी और आपकी मौजूदगी की सच में कद्र हो रही है। याद रखिए, कभी कभी किसी दोस्त को छोड़ना नुकसान ही होता है, आपको उतने टाइम के लिए बुरा लगेगा लेकिन वो जो लाइफ लॉन्ग और पिछले जितने भी सालों में आपकी दोस्ती रही है और वो गिल्ट में आप रहे हो और फिर वो कंप्लेन करते रहे हो आप, और उसके बाद जो है वो आपको बहुत ही तकलीफ हुई है, आप परेशान से रहे हो, फिर भी निभानी है इसलिए निभाते जा रहे हो, तो ये सारी सिचुएशंस से आप थोड़ा सा निकल जाओगे, रिलैक्स फील करोगे, कुछ टाइम तक सोचते रहोगे क्योंकि इतनी लंबी जब दोस्ती चलती है भले ही वन साइडेड रही हो, लेकिन एक चीज़ आपको मिलेगी और वो है आपका पीस। आपका पीस आपको वापस मिल जाएगा। कभी कभी ब्रेक फ्री होने का असली मतलब भी यही होता है कि अपनी खुशी को आप दोबारा से चुन रहे हैं, आप अपने आप को चुन रहे हैं। तो आप थोड़ा एनालाइज कीजिए कितनी और किस तरह की अतरंगी आपकी यारी है। अमिताभ बच्चन, फरहान अख्तर मिलके गाएंगे इसे, वजीर फिल्म से आ रहा है ये गाना। गुरप्रीत सैनी, दीपक रमोला ने मिलके इसको लिखा है, रोचक कोहली की।

खूब है लगी मुझको तेरी बीमारी, ये उस तरह वाली बीमारी ने लग जाए कि आप ही एक तरफा दोस्ती निभा रहे हैं, उसी बीमारी से ब्रेक फ्री होने की आज हमने बात की। और कभी कभी जो है उस दोस्ती के पीछे आपने भागना छोड़ देना चाहिए, जिसमें सिर्फ वो दोस्ती इसलिए चल रही है क्योंकि आप अकेले उसको संभाल रहे हैं, उसको चला रहे हैं। जो लोग वाकई आपकी परवाह करते हैं वो हमेशा आपसे मिलने के लिए आधा रास्ता जो है वो खुद तय कर लेंगे, ताकि आप फिर आधा रास्ता तय कर लें और आप लोग मिल जाएँ, है ना। तो खुद आप ये चुनिएगा कि हर उस से ब्रेक फ्री हो जाएं जो आपके पीस ऑफ माइंड को छीन रही है, फिर वो आपकी कितनी भी पुरानी दोस्ती क्यों ना हो, उसी टॉक्सिक दोस्ती, एक तरफा दोस्ती से ब्रेक फ्री होने की हमने बात की। आपको बता दें 12 बजे आप न्यूज़ सुनेंगे और 12 बज के 2 मिनट पर म्यूज़िक कैफ़े ओपन हो जाएगा, जो कि बस आधा घंटा ही ओपन रहेगा। फिर 12:30 बजे एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम आएगा, तो जल्दी से उस कैफ़े में आइएगा ज़रूर। अभी के लिए वो जो दोस्त जो अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहा,

उसको बहती हवा सा समझ के उसको जाने दो, फिर उसके बारे में पूछते मत रहना कि कहाँ गया उसे ढूंढो, ऐसे दोस्त को ढूंढने की जरूरत नहीं है। शान एंड शांतनु मोहित्रा मिलके गाएंगे, स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा, शांतनु मोहित्रा की कॉम्पोजिशन, थ्री इडियट्स से आ रहा है ये गाना।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर FM रेनबो और समय हो चुका है अब तक के कुछ मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता में स्थित भव्य प्रभानन मंदिर जाकर दर्शन किए। ये मंदिर यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। भारत की सहायता से इस मंदिर परिसर के संरक्षण और पुनरुद्वार किया जाएगा। दोनों नेताओं ने संयुक्त निवेदन के जरिए आपसी संबंधों को दृढ़तर बनाने का संकल्प लिया। राज्य में लगातार भारी बारिश के कारण उपजी स्थिति के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बात की। शाह ने कहा कि भारी बारिश एवं बाढ़ की स्थिति में केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव सहायता की जाएगी। और समाचार में आगे, केंद्र सरकार ने नवी मुंबई हवाई अड्डे के जरिए औषधि आयात की अनुमति दे दी है। इसका उद्देश्य औषधि आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और व्यापार को आसान बनाना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 के अंतर्गत नवी मुंबई हवाई अड्डे को औषधि आयात के रूप में अधिसूचित किया है। और समाचार के अंत में, कल्याण के एक अस्पताल में चिकित्सकों के साथ गलत व्यवहार और उन्हें मारपीट करने के आरोप में शिवसेना पार्षद रमेश महात्रे के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। नवजात शिशु को बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल ले जाने की सलाह को लेकर नाराज पार्षद और उनके साथियों ने कथित तौर पर दो चिकित्सकों के साथ मारपीट की। प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम के लिए बने रहिएगा इसी फ्रिक्वेंसी पर।

इतिहास फिल्म से सुना आपने ये गाना, और इतने तो साल हो चुके हैं इस फिल्म को, इस गाने को, लेकिन अब भी ये सॉन्ग्स जब भी प्ले करो इतना फ्रेश लगते हैं, है ना। और जब भी आपकी प्लेलिस्ट में भी आते होंगे, जब आप गाने सुन रहे होते हैं, तो आप इसको स्किप नहीं करते होंगे। इस तरह के गाने आज हम म्यूज़िक कैफ़े में प्ले करने वाले हैं, क्यों उसके बारे में आपको बताते हैं। पहले बता देंगे, अनुराधा पुडवाल हरिहरन की आवाज़ें थी, समीर ने लिखा, दिलीप सेन, समीर सेन की कॉम्पोजिशन थी। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप, आपको वेलकम करते हैं म्यूजिक कैफे में, जो बस आधे घंटे के लिए ही रहने वाला है शुरू। 12:30 बजे आप हमारा एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम आएगा उमंग, वो सुन पाएंगे। सो कैफे के दरवाजे बिल्कुल खुल चुके हैं, आपकी पसंदीदा टेबल पर आप बैठ सकते हैं, और आज का स्पेशल कुछ ऐसा है कि जिससे हर म्यूजिक लवर जरूर रिलेट कर पाएगा। सोचिए, क्या आपके पास भी कोई ऐसा गाना है जिसे आप कभी स्किप नहीं करते हो? अगर कोई ऐसा गाना है तो आप मुझको व्हाट्सएप करके बताइएगा 8657661071, 8657661071, यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कि वो गाना आएगा तो मतलब आपने सुनना ही सुनना है, उसको स्किप नहीं करते आप, चाहे आपने उसको कितनी बार भी सुना हो, जैसे ही वो गाना शुरू होता है आप बस उसको चलने देते हो। शायद आपको उसके हर लिरिक्स भी याद हो, शायद आपने उसे 100 बार सुना हो, लेकिन फिर भी वो हर बार नया सा महसूस होता है। तो आज म्यूज़िक कैफे में हम इसी चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे, उन गानों को, उन्हें जो है वो इस तरह के सॉन्ग्स जो हम कभी स्किप नहीं करते। आज की प्लेलिस्ट आप एंजॉय कीजिए, अपना अपने भी गाने ऐसे जो आप स्किप नहीं करते आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं, मैं वो भी प्ले कर दूंगी, है ना। क्या पहले तो सोचिए बैठ के कि कौन सा ऐसा गाना है जो आप स्किप नहीं करते, जिन्होंने आपके दिल में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली है। तो एक और गाना आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, इतना प्यारा, मतलब ये पूरा

एल्बम ही फैंटास्टिक था। कोई भी सॉन्ग उठा लो, लुटेरा इस फिल्म से आ रहा है ये गाना, मनमर्जियां, शिल्पा राव, अमिताभ भट्टाचार्य, अमित त्रिवेदी, नाम ही सुन लो, इतनी बेहतरीन आवाजें, ऊपर से अमिताभ भट्टाचार्य के ये

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: जी म्यूजिकली योर्स, आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप। म्यूजिक कैफे ओपन है जो बस आधे घंटे के लिए ओपन रहने वाला है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं और ऐसे गाने प्ले कर रहे हैं जो के आप स्किप नहीं करते, हैं ना, अनस्किपेबल आपकी प्लेलिस्ट में जो गाने हैं उनकी बात करेंगे और उस तरह के गाने हम आप तक पहुंचाएंगे। आपने नोटिस किया है कभी कि कभी कभी हमारे जो स्किप न करने वाले गाने हैं उनका कनेक्शन काफ़ी कुछ हमारी यादों से भी होता है ना। और जैसे कि मैंने कहा, आपको वर्ड टू वर्ड वो गाना याद रहता है, आपका ऑल टाइम फेवरेट होता है कभी, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो आपका फेवरेट सॉन्ग हो, लेकिन ऐसे है कि अगर आपकी लिस्ट चल रही है और वो गाना आता है तो आप सुन लेते हो उसको। और कभी कभी ऐसे गाने हो जाते हैं कि वो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं ना, कि हम उन्हें ट्रैवल करते वक्त, पढ़ाई करते वक्त, कुकिंग करते वक्त या बस खिड़की के पास बैठकर सुनते हैं और फिर भी वो कभी हमको ऐसे बोरिंग नहीं लगते। कुछ गाने ऐसे होते हैं उनको बार बार सुन लो तो फिर आपका मन उठ जाता है कि आप नहीं, अब इसको कुछ दिन हम नहीं सुनेंगे। लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं कितना भी सुन लो आप उसको स्किप करोगे ही नहीं। क्या पता हमारा अगला गाना भी ऐसे ही हो, आपकी प्लेलिस्ट का हिस्सा ही हो, है ना। तो बिना किसी देरी के आए आपको सुनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा गाने ही सुनवाते हैं क्योंकि टाइम कम है हमारे पास म्यूजिक कैफे में। जावेद अली गाएंगे इस गाने को, सईद कादरी ने लिखा, फ्रीडम की कॉम्पोजिशन तुम मिले से आ रहा है। ये बहुत ही प्यारा अनस्किपेबल गाना।

से। क्या बात है, ऐसे ऐसे ही गाने जब आप किसी को अपनी प्लेलिस्ट थमाते भी हो ना, तो कोई ऐसा एक गाना होता है जो आप वो सामने वाले को कहते हो कि इसको इसको स्किप मत करना, इसको ज़रूर जो है वो तुमने सुनना है। और फिर एक ऐसा सबका गाना होता है जो आप बहुत ही गर्व से रेकमेंड करते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि वो सॉन्ग जो है आप अगर किसी को रेकमेंड करोगे तो गाना निराश नहीं करेगा, है ना, आपकी एक इमेज बल्कि और निखर जाएगी। दिल से इस फिल्म से सुना आपने एक गाना उदित नारायण की ब्यूटीफुल वॉइस, गुलजार साहब के उतने ही ब्यूटीफुल अल्फाज, ए आर रहमान की बहुत बहुत खूबसूरत कॉम्पोजिशन थी। और म्यूज़िक कैफ़े में ऐसे ही नेवर स्किप सॉन्ग्स की हमने बात की, और इन सॉन्ग्स की सबसे अच्छी बात यही है कि हर किसी का जवाब जो है उसको लेकर अलग होता है। जो गाना आपके लिए बहुत स्पेशल है हो सकता है किसी और के लिए बिल्कुल ना हो, और यही तो म्यूजिक की खूबसूरती है। हम एक दूसरे को फेवरेट्स डिस्कवर करते रहते हैं इस तरह से, और उम्मीद करते हैं कि म्यूजिक कैफे के जरिए जो है आपको भी कोई एक गाना आपका ऐसा मिल गया होगा आज प्लेलिस्ट में जो आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। इसी के साथ म्यूजिक कैफे को यहीं रोकने का वक्त हो चला है। आपको बता दें आप स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग सुनेंगे, और 1 बजे फिर मराठी में न्यूज आएगी छत्रपति संभाजी नगर से, और 1:05 पर हिट एंड हॉट लेकर मैं हाजिर हो जाऊंगी।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
0: वाह क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
2: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
0: वाह ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई, योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़था बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीमबाई मानिकपुरी।
0: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
2: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
0: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।
2: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
0: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे
2: जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है राजाजी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
2: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
0: श्रोताओं इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की
2: जी।
0: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं। आज हम जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात
2: जी।
0: तो विमलेश जी आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था
2: जी। अजीत जी मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे, गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
0: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने
2: जी।
0: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही
2: जी।
0: शाम ढलने लगी थी तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
2: श्रोताओ यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
0: श्रोताओ इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
2: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है, रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
0: अरे वाह ये तो बड़ी रोचक बात है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
2: अजीत जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।
0: क्यों?
2: इसके कई कारण हैं। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं, तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता।
0: जी विमलेश जी, श्रोताओ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
2: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है
0: जी।
2: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं, लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए
0: जी। तो श्रोताओ ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
0: श्रोताओं आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800-440-559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए आप सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
2: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
3: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
3: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
3: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
3: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
3: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
3: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
3: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
3: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
3: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
3: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
3: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
3: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
3: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
3: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।

0: ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है।

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।
0: दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहां लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया।
1: मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा न पशु पालना। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं, जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
0: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वो मेरा, जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
1: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता ये है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वो निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एम्यू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।
1: कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो? अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो देखने में कैसे लगते हैं?
1: इनका रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल घुंघराले।
0: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
1: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती है, बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो।
0: हाँ, ये तो है। आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
1: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है। ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
0: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है। यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
1: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोस लेते हैं, और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे सादे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
1: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े, वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे सादे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
0: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली, और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
1: 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
0: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई, और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
1: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
0: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
1: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।
0: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटू नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
2: हम लोग आपके इस ककाटू पार्क की फिल्म बनाने आए हैं, और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
3: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
4: लेकिन मिस्टर नेजी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया, और फिर वो भी इन्हीं में समा गई।
2: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
3: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
4: कैसे चित्र?
3: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
2: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
3: क्यों नहीं, अभी चलिए।
2: चलिए
3: आइए।
2: देखो वेलिंडा, ये अजगर का चित्र।
4: अरे इसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्सरे फोटो हो।
2: और ये देखो, ये गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
4: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो आदिवासी का ये चित्र।
2: मिस्टर नीट जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
3: गुफाओं में तो नहीं, हाँ पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, वो बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
2: ठीक है, कल सुबह हम वहां आएंगे, अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार लें।
3: हाँ।
2: गुड मॉर्निंग मिस्टर नीट जी।
3: गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए।
2: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
3: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है इल्किर।
2: अच्छा अच्छा।
3: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए, आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
4: ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं।
3: जी।
2: अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलिंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई, और देखो ना कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा।
4: वाकई कमाल है।
3: अभ्यास से गलतियां नहीं होती।

0: हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं।
1: सचमुच?
2: स्टेन, एक चित्र हम भी खरीद लें?
1: हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।
0: लीजिए, ये आपका हुआ।
1: इसकी कीमत?
0: कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है।
2: सच?
1: धन्यवाद।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: हाँ जी, म्यूजिकली योर्स आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो। शर्मीन संग शामिल हैं आप। हिट एंड हॉट ये प्रोग्राम शुरू हो गया है जिसमें आपकी पसंद के गाने हम प्ले करते हैं। आज की थीम आपको बता दें कि किस तरह की थीम के आपने गाने रिक्वेस्ट करने हैं। तो आज है ना, हम ऐसे करते हैं कि सॉन्ग्स के थ्रू सारी दुनिया जो है वो घूम लेते हैं। क्या कहते हो आप, है ना? ऐसे गाने आपने रिक्वेस्ट करने हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का जिक्र हुआ हो, उनका नाम आया हो, है ना? समझ गए आप? बिल्कुल ऐसे सॉन्ग्स जो आपके फेवरेट हों, जिनमें ऐसे गानों में जिनमें किसी कंट्री का नाम आया हो, वो आपने सेंड कर देना है हमें 8657661071 पर 8657661071। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपना नाम लिखना मत भूलिएगा। और जब कंट्री की बात हो रही है तो शुरुआत अपनी ही कंट्री से क्यों ना की जाए। आए सुनाते हैं आपको इंडिया वाले हैप्पी न्यू ईयर से। नीति मोहन, विशाल ददलानी, के शंकर महादेवन की आवाजें हैं। इरशाद कामिल ने इसे लिखा, विशाल एंड शेखर की कॉम्पोजिशन।

भाई वाह, दीपक जी की वजह से हम अफगानिस्तान तो पहुंच गए। अफगान जलेबी आपने सुना, ये गाना फैंटम इस फिल्म से अख्तर चनल गा रहे थे, अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा। प्रीतम की कॉम्पोजिशन आप सुन रहे हैं 107.8।

FM रेनबो शर्मीन संग शामिल हैं आप हिट एंड हॉट इस प्रोग्राम में। मैंने आपसे कहा है कि ऐसे गाने आपने अपने फेवरेट सॉन्ग्स रिक्वेस्ट करने हैं जिनमें किसी कंट्री का नाम आया हो, और उसको भेज देना है 8657661071 पर। 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अपना नाम लिखना मत भूलिएगा। आए अब आपको लंदन लेकर जाते हैं, और इसकी रिक्वेस्ट हमें प्रिया ने की थी, तो उनके लिए ये गाना प्ले करते हैं। ये है जलवा से आ रहा है ये गाना, सुखविंदर सिंह, पंकज उदास की आवाज़ें हैं, देव कोहली ने इसे लिखा, आनंद राज आनंद की कॉम्पोजिशन।

अब लौट चलें। इस फिल्म से सुना आपने ये गाना, रूपाली और महेश की रिक्वेस्ट पर था ये गाना। जसविंदर नरूला की आवाज़, समीर ने इसे लिखा, बाली ब्रह्म भट्ट की कॉम्पोजिशन थी। और हिट एंड हॉट इस प्रोग्राम में मैंने आपसे पूछा है कि आपने ऐसे गाने रिक्वेस्ट करने हैं जिन गानों में

किसी कंट्री का नाम आया हो। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप और आप लोगों की सॉन्ग रिक्वेस्टें आ रही हैं, काफ़ी आप सोच विचार करके भेज रहे हो और इसमें मज़ा आता है ना। अदरवाइज़ हर शो में वही वही गाने आप रिक्वेस्ट करते हैं। आपको एक चीज़ बता दें, 1:30 बजे आप हमारे न्यूज़ स्टूडियो से मराठी में समाचार सुन पाएंगे और 1:40 मिनट पर आपकी सॉन्ग रिक्वेस्टें लेकर, हिट एंड हॉट लेकर मैं दोबारा से हाजिर हो जाऊँगी। अभी के लिए आपको सुनाते हैं प्रणव शिंदे की रिक्वेस्ट पर लंदन पेरिस न्यूयॉर्क का ये टाइटल ट्रैक आ रहा है। ऐसे गाने रिक्वेस्ट करें जिन गानों में किसी कंट्री का नाम आया हो, ये मैंने आपसे कहा है। अभी के लिए प्रणव शिंदे की रिक्वेस्ट पर लंदन पेरिस न्यूयॉर्क का ये टाइटल ट्रैक, अली जफर सुनिधि चौहान की आवाजें, अली जफर ने इसे लिखा और कंपोज किया है। बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 FM रेनबो पर, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।

0: तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ।
1: अब इंतजार करने की जरूरत नहीं।
2: क्यों?
1: क्योंकि अब आप हमें ऑनलाइन भी सुन सकते हैं।
2: कैसे?

में जाकर प्रसार भारती का न्यूज ऑन एयर ऐप डाउनलोड कीजिए। एफएम रेनबो मुंबई को अपनी फेवरेट लिस्ट में ऐड करके आप हमसे जुड़ सकते हैं 24/7।

जापानी परियां मुस्कुराए, देखो वो गोरी गोरी राय हमको इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है फिजाए, जापानी

0: जिस तरह से रफी साहब ने जापान कहा एकदम मजा आ जाता है ये गाना सुनने में. आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो. शर्मीन संग शामिल हैं आप. हिटन हॉट ये प्रोग्राम चल रहा है. लव इन टोक्यो का टाइटल ट्रैक आपने सुना. हसरत जयपुरी साहब ने इसको लिखा. रफी साहब की आवाज, शंकर जयकिशन की कॉम्पोजिशन. और हिटन हॉट में मैंने आपसे पूछा था आज कि इस तरह के आपके फेवरेट सॉन्ग्स रिक्वेस्ट करें जिन गानों में जो है किसी कंट्री का नाम आता हो. आप में से कई सारे लोग जो हैं वो स्टेट्स के जो नाम आते हैं वो वाले गाने भेज रहे हैं, लेकिन कोई कंट्री का नाम आता हो. और इस गाने की रिक्वेस्ट हमें की थी हितेंद्र दास ने, राजेंद्र परमार जी ने, दिग्दर्शन एंड कविता ने. और बिना किसी देरी के अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है. और जिनके गाने आज प्ले नहीं हो पाए या आप लोगों को थीम कुछ समझ नहीं आई उनके भी मैं जाते जाते नाम ज़रूर लूँगी. और अभी के लिए जो है आपको सुनाते हैं फिरोज सिकनपुरिया जी, विजय लक्ष्मी शेट्टी जिन्होंने हमें चेंबूर से मैसेज किया था, और फिरोज सिकनपुरिया जी, इनकी रिक्वेस्ट पर आ रहा है ये गाना एन इवनिंग इन पेरिस का ये टाइटल ट्रैक. रफी साहब की आवाज, शंकर जयकिशन की कॉम्पोजिशन.
1: अजी ऐसा मौका

और जी इसी के साथ मेरे जाने का वक्त हो चला है। जाते जाते दो गाने आप लोगों के लिए ज़रूर मैं प्ले करूँगी, लेकिन उससे पहले आप सभी के नाम ले लें जिनके गाने प्ले नहीं हो पाए। और हिट एंड हॉट को यहीं रोकने का वक्त हो गया है। आपको बता दें 2 बजे आप अंग्रेज़ी में न्यूज़ सुनेंगे और 2:15 बजे हिंदी में न्यूज़ आएगी और 2:30 बजे मराठी प्रोग्राम सला दोस्तों बोलू का ही स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए आपने बने रहना है 107.1 FM रेनबो पर। और हमें मैसेजेस आए हैं जिनके, प्रकाश शिंदे, संदीप कुमार, मीना जी का मैसेज आया था और गुरमीत सिंह मीता ने दिल्ली से मैसेज किया था और हमें वैष्णवी ने मैसेज किया था, राकेश माथुर जी का मैसेज आया था, विजेंद्र जी ने अकोला से मैसेज किया था, प्रदीप अनंत कृष्णन जी, फिरोज सिगनपुरिया, विजय लक्ष्मी शेट्टी, राजेंद्र परमार और साथ ही साथ हमें प्रथमेश ने विक्रोली से मैसेज किया था, अभिजीत गवानकर और उनकी फैमिली हमें सुन रही थी, शुभदा का मैसेज आया हुआ है, प्रमोद चिंचोलकर ने हमें मैसेज किया था और नयन ने हमें वडाला से मैसेज किया था। उन्हीं की रिक्वेस्ट पर ये अगला गाना मैं आप लोगों के लिए प्ले कर रही हूँ, मेड इन इंडिया, आलिशा चिनॉय की आवाज़ में आएगा ये गाना। और उसके बाद शोभा की रिक्वेस्ट पर हम प्ले करेंगे मेरे मियाँ गए इंग्लैंड, तो इन दो गानों के लिए आपने बने रहना है 107.1 FM रेनबो पर। श्याम ने तमिलनाडु से हमें मैसेज किया था, दिग्दर्शन कविता, अजय सखरे ने इंदौर से, मुकेश कश्यप और उनकी फैमिली हमें सुन रही थी, दीपा पालकर का मैसेज आया था, चेतन कुमार ने हमें बिहार से मैसेज किया था, शुभ लक्ष्मी जी का मैसेज आया हुआ था, पंकज मोहड़, नितिन स्वामी, नंद कुमार झाड़ेकर ने रत्नागिरी से मैसेज किया था, राम प्रजापति, मिंटू और उनकी फैमिली हमें सुन रही थी, रजनीकांत पाटिल जी, विठल जी, धनंजय जी ने मैसेज किया था, कंचन का मैसेज आया हुआ था, हरजिंदर शिंदा जी और उनकी फैमिली, दादर से बाबा, संजय दर्शन, विजय महोबिया जी और उनकी फैमिली, डॉक्टर अंजू अंधेरी ईस्ट से, अशोक पाटिल जी वर्ली से, आदर्श कनौजिया, रियासत हुसैन जी, रघुनाथ जी, इन सभी का मैसेज आया हुआ था, थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। प्रमोद कारखानस जी ने अभी अभी मैसेज किया है। और इसी के साथ अब मेरे जाने का वक्त हो चला है, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अब जा रही है शर्बीन, अपना ख्याल रखें सामीन।

0: अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांबनन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रांबनन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
1: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
0: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोच्चि में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी, डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय

0: दुर्गा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा देशों के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली एनसीआर में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे ये भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजेशन तक कोई ईएमआई नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में है। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अलनीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अलनीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मॉनसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृहमंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम

0: करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार गांतोक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज़ गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले होर्मुज़ जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज़ जलडमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: और अब मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर था। और अब खेलों में, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांगण मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न। 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2-दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

रेनबो पर मैं आ चुकी हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का ये प्रसारण आज आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1.04 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर सुन सकते हैं। आज की शाम थोड़ी सी भीगी हुई चाय के प्याले में डूबी हुई है, तो कुछ बातें करेंगे, कुछ गाने सुनेंगे आप लोगों के साथ। मैं बारिश को लेके कुछ ऐसी बातें करना चाहती हूँ जिसे सुन के आपका दिल भी कह उठे लव यू जिंदगी। जिंदगी को प्यार करते रहेंगे मेरे यानी उर्वशी के साथ। बस थोड़ी ही देर में वापस मिलती हूँ इन दो गानों के बाद। हमारे साथ बने रहिए एफएम रेनबो पर।

शाम को कितने भी रोकने की कोशिश कर लो, लेकिन वो डूबने तो वाली है। मैं हूं उर्वशी और आप सुन रहे हैं लव यू जिंदगी एफएम रेनबो पर। लव यू जिंदगी हमें हम ऐसी बातें करते हैं ना जो दिल को भाए, अच्छी लगे, जिसे सुन के जिंदगी से प्यार करने का मन करे। तो मैं एक ऐसा छोटा सा किस्सा आपको बताती हूँ जो आज मेरे साथ हुआ। जनरली मैं जब आकाशवाणी आ रही होती हूँ रेनबो में शो करने के लिए, तो मैं ट्रेन से आती हूँ, लोकल से आती हूँ। तो जब आते थे तो बीच में डब्बे में कुछ कुछ ज्वेलरी, हेयर क्लिप्स और वो सब बेचने के लिए लोग आते रहते हैं। तो आप उनको देखते हो, अगर आपको कुछ चाहिए तो उनसे आप खरीद लेते हो। ऐसे ट्रेन में हमारा समय भी पसार हो जाता है और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी हो जाती है। लेकिन आज जब मैं ट्रेन में बैठी तो थोड़ी देर बाद मैं देख रही हूँ तो वो जो रेनकोट होते हैं पतले वाले, छाते, वो सब लोग बेच रहे थे। तो मैं सोचती हूँ कि लोग कितनी भी इस बात को बड़ी बना दे कि बारिश आ गई, सब रुक गया, सब डूब गया, लेकिन जो स्पिरिट है इस शहर की वो तो आपको मुंबई ट्रेन में ही देखने को मिलती है कि चलो भाई बारिश आ रही है, लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये बेचना शुरू कर दिया जाए। और इसे देख के मेरा मन भी कहता है लव यू जिंदगी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफ एम रेनबो चैनल। मैं हूँ उर्वशी और मिलती हूँ इस प्यारे से गाने के बाद।

श्रोताओं, आकाशवाणी की कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी के अंतर्गत कार्यक्रम निर्माताओं एवं निर्माण संस्थाओं से रचनात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए https://prasarbharti.gov.in/nipp वेबसाइट पर जाएं। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।

लव यू जिंदगी सुन रहे हैं आप मेरे यानी उर्वशी के साथ। और जब मौसम अच्छा होता है ना तो जिंदगी के लिए ऐसे ही आवाज निकलती है कि लव यू जिंदगी। जब बहुत गर्मी थी, पसीने छूट रहे थे, तब बैठे बैठे गुस्सा आ जाता था, किसी की बात अच्छी नहीं लगती थी। और अभी जब मौसम थोड़ा सुहाना हो गया है तो बैठे बैठे सब कुछ अच्छा लगने लगा है। 5 बजे वाली चाय जो नॉर्मली भी हम पीते थे वो थोड़ी और टेस्टी लगने लगी है। वो वड़ा पाव जो नॉर्मली भी खा ही लेते थे वो आजकल बड़ा स्पाइसी, बड़ा मसालेदार लगने लगा है। तो जैसे मौसम बदलता है ना, लोगों के मूड भी बदल जाते हैं। लव यू जिंदगी में आपका मूड अच्छा करने के लिए मेरे पास है बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने, कुछ बातें, और आपको तो पता ही है आपके साथ जुड़े रहने में और बातें करने में मुझे कितना मजा आता है। जब आपसे मिलती हूँ तब भी मेरा दिल बोलता है लव यू जिंदगी। तो लव यू जिंदगी सुनते रहिए, और बहुत सारे गाने हैं आपके लिए जो मैं एक एक करके बजाती हूँ। और हाँ, आपको अगर हम तुम में जो गाने सुनने हैं वो आप अभी से मुझे मैसेज भी कर सकते हैं 8657661071 पे, ताकि मैं लिस्ट बना के रख सकूँ और आपके गाने, आपकी फरमाइश पूरी कर सकूँ।

FM रेनबो सुन रहे हैं आप मेरे यानी उर्वशी के साथ। स्टूडियो की घड़ी में बज रहे हैं 5:54 और एग्जैक्ट 6:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इसी केंद्र पर। और उसके बाद हम जो शो करेंगे वो मेरा बहुत ही पसंदीदा शो है अंदाज़े बयां, जिसमें कुछ शेर, कुछ गज़लें और कुछ बहुत सारी प्यारी प्यारी बातों के साथ मैं आपको फिर मिलूंगी। लेकिन उससे पहले 6:05 पे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल और अब वक्त हुआ है अंदाज़े बयां का। आपने समाचार सुने और अब कुछ शेर, कुछ शायरी, कुछ प्यारे नगमे लेकर मैं उर्वशी फिर से एक बार आपके लिए हाजिर हूँ। आप ये प्रसारण आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 104 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर सुन सकते हैं। तो बस मेरे साथ बने रहिए अंदाज़े बयां में।

जब जब बरसात होती है ना, तो ये मेरा सबसे पसंदीदा गाना है जो मैं बार बार सुनती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेडियो चैनल। FM रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1.04 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर सुन सकते हैं। तो बातें अंदाजे बयां में चल रही थी कुछ गज़लों की। तो कुछ कुछ ऐसे नगमे होते हैं ना जो बहुत पहले सुने थे, शायद स्कूल में, शायद कॉलेज में, और वो आपके मन में रह गए। और जब रेडियो पे मैंने उनको बजाया तो आप फिर से वहां चले गए जहां आप थे। कैफ भोपाली करके एक बहुत खूबसूरत शायर का बस इसी टॉपिक को लेके एक सुंदर सा शेर है कि कैफ परदेश में मत याद करो अपना मकान, कैफ परदेश में मत याद करो अपना मकान, अब के बारिश ने उसे तोड़ गिराया होगा। क्या बात है, कितने सारे लोग हैं जो परदेश तो नहीं लेकिन अपना गांव, अपना छोटा मोटा शहर छोड़ के बंबई आ जाते हैं काम के चक्कर में। तो जब बारिश होती है तो उनको अपना मकान याद आता ही होगा ना। तो उन मकान के नाम जो हम छोड़ आए हैं उनके नाम, अगला गाना सुनते हैं FM रेनबो पर।

अंदाज़े बयां में आप सुन रहे थे इजाज़त फिल्म का ये बहुत ही बेहतरीन गाना। बहुत ही रोमांटिक सा मौसम जब होता है ना, तो जो कॉलेज में अपनी नोटबुक के पीछे शायरियाँ लिखी थी वो याद आने लगती है। एक मुनीर नियाज़ी का बहुत खूबसूरत सा शेर है कि गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया मैंने तुझको खोया नहीं। कितनी खूबसूरत बात है ना। एक दूसरा शेर है मैं आपको सुनाना चाहती हूँ जमाल एहसानी का कि उसने बारिश में भी खिड़की खोल के देखा नहीं, भीगने वालों को कल क्या क्या परेशानी हुई। एक कहानी जैसी बात ये शायर बस दो लफ्ज़ों में कह देते हैं और हमारा दिल खुश हो जाता है। FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं अंदाज़े बयां मेरे यानी उर्वशी के साथ, बने रहिए।

श्रोताओं, आकाशवाणी की कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी के अंतर्गत कार्यक्रम निर्माताओं एवं निर्माण संस्थाओं से रचनात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए https://prasarbharti.gov.in/nipp वेबसाइट पर जाएं। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।

अंदाज़े बयां सुन रहे थे आप मेरे यानी उर्वशी के साथ। बस अब अंदाज़े बयां थोड़ी ही देर में ख़त्म होगा और फिर समय होगा आप सबके सबसे फेवरेट शो का, जिसका नाम है हम तुम, जिसमें आपकी पसंद के ही गाने हम बजाते हैं। तो अगर आप अपने जो फेवरेट गाने हैं वो मुझे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे 8657661071 पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। मैं कोशिश करती ही हूँ कि जितने हो सके उतने गाने मैं आप सबके बजाऊं पसंद के, लेकिन कभी कभी छूट भी जाते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि सारे गाने आप लोगों की फरमाइश के बजाऊं। और 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, 7 बजे प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे और उसके बाद मैं आपको मिलूंगी हम तुम के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी मुंबई केंद्र पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो और वक्त हो चला है हम तुम का। कोशिश करेंगे कि आप सभी के गाने मैं सुनाऊं और कुछ गाने ऑलरेडी जो लिसनर्स ने भेजे थे वो मैंने लोड करके रखे हैं जो मैं आपको सुनाना चाहती हूं। लेकिन सबसे पहले ये नंबर नोट कर लीजिए जिस पर आप अपनी फरमाइशें भेजेंगे, 8657661071 पर आप अपनी फरमाइश के गाने भेज सकते हैं। सबसे पहले दो गाने हैं, दो हमारे बहुत ही रेगुलर लिसनर्स हैं जिनकी फरमाइश के गानों से आज का हम तुम हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले विजेंद्र घटोल जी जो रेगुलरली हमें सुनते हैं, उनकी फरमाइश है गोरी तेरी आंखें कहे, लकी अली का गाना। और पंकज महोड़, वो भी हमको रेगुलर सुनते हैं, उनकी फरमाइश है बोलना हल्के हल्के, झूम बराबर झूम फिल्म का ये गाना। तो ये दो गाने हम सुनेंगे और अगर आप भी अपना गाना सुनना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कीजिए, आई विल ट्राई कि मैं आप सभी के गाने बजाऊं।

एफएम रेनबो पर है आप मेरे यानी उर्वशी के साथ और हम सुन रहे हैं हम तुम। तो आप सभी की फरमाइश के गाने मैं बजा रही हूँ एक एक करके, लेकिन आप भी समझते हैं ना कि कुछ समय में कुछ ही गाने मैं प्ले कर पाती हूँ आपके लिए, लेकिन मैं कोशिश करना चाहती हूँ कि जो जो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं वो तो मैं एक बार पढ़ूँ। प्रदीप अनंत कृष्णन मैसेज कर रहे हैं कि एन्जॉइंग द शो एंड सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच। आपकी फरमाइश जी मैंने देखी हुई है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके गाने आपको सुना सकूँ। अंकित है जो काफ़ी समय से हमको सुन रहे हैं, उन्होंने जो मेरा रांझा मैंने गाना बजाया था उसका और पिया तोरा कैसा अभिमान गाना, उन सभी की तारीफ की है। अंकित की भी एक फरमाइश है, अंकित मैं कोशिश करूंगी कि मैं वो बजाऊँ। हरजिंदर छिंदा जो पंजाब से हमें सुनते हैं उन्होंने भी अपनी फरमाइश भेजी है, वो अपने गाने सुन रहे हैं। तो सर आई ट्राई कि आपके भी मैं गाने बजाऊँ। शंकराचार्य जी तेलंगाना से हमें सुन रहे हैं, वो कहते हैं कि हाय मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, इनकी भी फरमाइश है आई ट्राई कि मैं आपका गाना भी बजाऊँ। फिरोज सिंगपुरिया है, उनकी भी फरमाइश है, कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश भी हम पूरी करें। दत्ता केदार पंडरपुर से, दिग्दर्शन और कविता मेरठ कैंट से, रविंद्र बाल सराफ ठाणे से, नितिन स्वामी अरोली से, सुशील यादव रेणु, पंकज महोड़ जी, महाराज कीर्तनपुरी जी, हीरामणि वर्मा जी, संजय दर्शन जी, प्रमोद चिंचोलकर जी, प्रणव शिंदे जी, बहुत सारे लोग हैं जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी मैं दो गाने आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। जो गाने मैं सुनाने वाली हूँ वो है एक अजय सखारे जी की फरमाइश, मैं जहाँ रहूँ, नमस्ते लंदन फिल्म से, और दूसरी फरमाइश है वैशाली की मुंबई से, सावन बरसे तरसे दिल। अभी आप ये दो गाने सुनिए, उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि आप सभी की फरमाइश को भी मैं एक एक करके पूरा करूँ। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो।

हम तुम सुन रहे हैं आप मेरे यानी उर्वशी के साथ एफएम रेनबो पर। आप सभी की फरमाइशें, आप सभी के मैसेजेस और बहुत सारा प्यार, यही है जो हमको बार बार स्टूडियो की तरफ खींच लाता है ना। एफएम रेनबो पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं क्या करने वाली हूँ कि जो जो लोग हमें मैसेज कर रहे हैं उन सभी का नाम तो मैं लेती हूँ, लेकिन मैं बैक टू बैक तीन गाने जब मैं जाऊंगी तब तीन गाने आपके लिए बजाने वाली हूँ, ताकि जितना हो सके उतने गाने आप तक पहुँच पाए। आपकी ही फरमाइश के गाने हैं तो आई एम ट्राइंग कि वो सारे गाने मैं बजाऊं। लेकिन सबसे पहले हमारे कई लिसनर्स ने हमें ये मैसेज किया है कि आज दिग्गज अभिनेत्री नीतू सिंह जी का जन्मदिन है, तो उनको हम शुभकामनाएँ देते हैं उनके जन्मदिन पर। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू हर। और अभी हम जो गाने सुनने वाले हैं, सबसे पहला हम गाना सुनेंगे जो संजय दर्शन की फरमाइश है, परदेस फिल्म का गाना दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। दूसरा गाना जो हम सुनने वाले हैं नितिन स्वामी ऐरोली से, जिनकी फरमाइश है तेरी मेरी कहानी। और तीसरा गाना अंकित जी की फरमाइश पर हम सुनेंगे कुछ इस तरह। और ये तीन गानों के बाद मैं जब मिलूंगी तो शायद वक्त हो चला होगा मेरी विदा का, लेकिन उससे पहले आपकी फरमाइश के ये गाने मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तो सुनते हैं एफएम रेनबो पर आपकी फरमाइश के गाने।

एफएम रेनबो पर मेरे यानी उर्वशी से आपके जुदा होने का समय आ गया है, लेकिन जाते जाते एक फरमाइश है प्रणव शिंदे जी की, जो थोड़े रूठे हुए से लग रहे थे। उनका ये था कि मैं बहुत ही रेगुलर लिसनर हूँ, लेकिन मेरी फरमाइश आप क्यों नहीं बजाते। लीजिए प्रणव जी, आपकी फरमाइश पर मर्डर टू का ये गाना फिर मोहब्बत करने चला हूँ मैं बजाती हूँ। और बाकी सारे लिसनर्स से भी कहना चाहती हूँ कि मैं कोशिश हमेशा करती हूँ कि आप सभी के गाने बजाऊँ, लेकिन जो नहीं बजते वो नेक्स्ट टाइम पक्का बजाऊंगी। ठीक है, तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे जब एफएम रेनबो पे आपसे मिलने का मौका मिलेगा। गुड नाइट।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका

0: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्रुक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओ'नील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्यांग संचिता ओब्रोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को

0: उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
1: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
2: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ऋषु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
3: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी के किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वर्णा नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ EPFO खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत IT सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि

0: की प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
1: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए और 56 पैसे पर बंद हुआ।
0: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्सुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेंस और यूक्रेन की मार्ता कोत्सुक ने जस्मीन पाउलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से, और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की। और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Melbourne to take part in the 3rd India-Australia annual summit. India and Russia reaffirm commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora. DRDO conducts successful flight test of Pinaka long-range guided rocket at Chandipur in Odisha. Monsoon recovery brings relief. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan expresses confidence that rainfall to gain further momentum this month, leading to acceleration in Kharif sowing. Centre assures all possible assistance to flood-affected states. US President Donald

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सभा अल खालिद अल सभा से

मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में आज 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उन्होंने सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच बेहतर सहयोग पर बल दिया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्टा कोस्त्युक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्टा कोस्त्युक ने जैस्मिन पाउलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कितनी खूबसूरत सी लाइनें हैं ना, जिंदगी चांद से बेहतर नजर आती है। जी हाँ, जब इंसान इश्क मोहब्बत में होता है तो जिंदगी तो उसे चांद के बराबर ही लगती है। जमीन पर होता है महबूब के साथ तो लगता है चांद की सैर कर रहा है, और ये एक्सपीरियंस बहुत ही खास होता है। फिलहाल आपको याद दिला दूं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो पर, आपकी दोस्त गीतांजलि के साथ। और गजलों का ये कारवां रुकना नहीं चाहिए। गजलें हमारी जिंदगी में तन्हाई के वक्त में हमें बहुत कुछ दे जाती हैं। जिंदगी का सुकून सिमटा है इन गजलों में। सुनिए अगली गजल।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। FM रेनबो पर रात 9 बजे।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, अब एक नए समय पर हर गुरुवार

0: शाम 4 से 5 एफएम रेनबो पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

कौन है जो एक साये की तरह मेरे दिल को छूता हुआ गुजर जाता है, कभी पास से कभी दूर से। एक आवाज, एक नगमा, एक गीत बनकर रख रख में उतर जाता है, कभी पास से कभी दूर से। कौन है जो मुझे अपनी तन्हाई का एहसास दिला जाता है, एक खालीपन सूनापन छोड़ जाता है। मैं उसे देखना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ, उंगलियों से उसके चेहरे को छूना चाहती हूँ। कौन है जो पास रहकर भी मुझसे दूर है, कदमों की आहट सुनती हूँ, पलटती हूँ, उसे देखती हूँ, तस्वीर बन जाती हूँ, खुद को भूल जाती हूँ, बेखुद हो जाती हूँ।

0: चूड़ियां ले लो, चूड़ियां, रंग बिरंगी चूड़ियां।
1: जी हाँ, गजलों का ये सफर चलता रहा, हम भी इसके साथ साथ चलते रहे। गजलों की दुनिया बहुत ही अलग होती है ना, कव्वालियों की दुनिया, गजलों की दुनिया आपको जाने कहाँ से कहाँ ले जाती है। फिलहाल प्रोग्राम में वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन जाते जाते बाजार फिल्म की एक बहुत ही खूबसूरत सी गजल मैं आपके लिए प्ले कर जा रही हूँ। इसे सुनते रहिएगा, इंजॉय करते रहिएगा, और FM रेनबो आकाशवाणी के सभी प्रोग्राम्स को आप यूं ही प्यार स्नेह से सुनते रहिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, शुभ रात्रि।
0: अब धानी चुड़िया कहाँ से लाऊं मैं? यही चित्ती मुश्किल से मिली, हफ्ते भर की कमाई गई ना इसमें।

आकाशवाणी रेनबो पर अब प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। नई दिल्ली में भारत और म्यांमार के बीच दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय बैठक संपन्न हुई। संगठित अपराधों से मिलकर निपटने पर चर्चा भी हुई। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की। भारत ने पश्चिम एशिया के बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मध्य प्रदेश के श्योपुर में गगनयान मिशन के लिए एकीकृत मुख्य पैराशूट एयरड्रॉप परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। सरकार ने तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफगानिस्तान के कृषि सिंचाई और पशुपालन मंत्री मौलवी अताउल्ला ओमारी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान जताया कि भारत इस वर्ष 7% की वृद्धि दर के साथ विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रिजर्व बैंक के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सोने के आभूषणों के बदले दिए गए ऋण में इस वर्ष मई में लगभग 70% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। भारतीय खेल प्राधिकरण और सफदरजंग स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर ने खेल विज्ञान, खेल चिकित्सा, खिलाड़ियों के पुनर्वास और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आकाशवाणी रेनबो पर आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम जीरो आर शो। आपके साथ मैं आपकी दोस्त अर्चना।

के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आकाशवाणी रेनबो पर अब प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। नई दिल्ली में भारत और म्यांमार के बीच दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की बैठक संपन्न हुई। संगठित अपराधों से मिलकर निपटने पर चर्चा हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की। भारत ने पश्चिम एशिया के बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने उड़ीसा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मध्य प्रदेश के श्योपुर में गगनयान मिशन के लिए एकीकृत मुख्य पैराशूट एयर ड्रॉप परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। सरकार ने तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफगानिस्तान के कृषि सिंचाई और पशुपालन मंत्री मौलवी अताउल्ला उमारी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। नई दिल्ली में 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान जताया कि भारत इस वर्ष 7% की वृद्धि दर के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रिजर्व बैंक के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सोने के आभूषणों के बदले दिए गए ऋण में इस वर्ष मई में लगभग 70% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। भारतीय खेल प्राधिकरण और सफदरजंग स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर ने खेल विज्ञान, खेल चिकित्सा, खिलाड़ियों के पुनर्वास और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की अंडर 23 महिला मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 पदक पक्के किए। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में भारत की 9 मुक्केबाज सेमीफाइनल में पहुंची। और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

आकाशवाणी रेनबो पर आइए अब सुनते हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। नई दिल्ली में भारत और म्यांमार के बीच दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय बैठक संपन्न हुई। संगठित अपराधों से मिलकर निपटने पर चर्चा हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की। भारत ने पश्चिम एशिया के बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मध्य प्रदेश के श्योपुर में गगनयान मिशन के लिए एकीकृत मुख्य पैराशूट एयर ड्रॉप परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। सरकार ने तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफगानिस्तान के कृषि सिंचाई और पशुपालन मंत्री मौलवी अताउल्ला उमारी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। नई दिल्ली में 17वां कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान जताया है कि भारत इस वर्ष 7% की वृद्धि दर के साथ विश्व की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रिजर्व बैंक के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सोने के आभूषणों के बदले दिए गए ऋण में इस वर्ष मई में लगभग 70% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। भारतीय खेल प्राधिकरण और सफदरजंग स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर ने खेल विज्ञान, खेल चिकित्सा, खिलाड़ियों के पुनर्वास और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और खेलों में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की अंडर 23 महिला मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 पदक पक्के किए और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में भारत की 9 मुक्केबाज सेमीफाइनल में पहुंची। और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्टा कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

आकाशवाणी रेनबो पर अब आपके लिए लेकर आए हैं हम अपना अगला कार्यक्रम जिसका शीर्षक है भुलाई ना बने। तो आइए सुनते हैं कुछ यादगार गीत जिन्हें हम हमेशा गुनगुनाते रहना चाहते हैं। आपके साथ हूँ मैं आपकी दोस्त अर्चना।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी ची नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

की तरह मेरा भी एक सुंदर साजन था। उसकी आंखों में नशा, बाजू में ताकत और दिल में हिम्मत थी। बिजली की

0: तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं FM रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की। भारत ने पश्चिम एशिया के बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल कुवैत के विदेश मंत्री शेख जर्रा जाबेर अल अहमद अल सबा से मुलाकात की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के क्षेत्रीय प्रभावों पर चर्चा की। नई दिल्ली में भारत और म्यांमार के बीच दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय बैठक हुई। संगठित अपराधों से मिलकर निपटने पर चर्चा की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाई टेस्ट किया। सरकार ने तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान

0: खान ने अफगानिस्तान के कृषि सिंचाई और पशुपालन मंत्री मौलवी अताउल्लाह उमारी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। विभिन्न कार्यक्रमों सहित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अगरतला में त्रिपुरा व्यापार सम्मेलन 2026 में शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान जताया कि भारत इस वर्ष 7% की वृद्धि दर के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की अंडर 23 महिला मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन। 9 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्के किए। विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्टा कोस्त्यूक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया। और दिल्ली में आज बादल छाए रहने की संभावना। सुबह और दोपहर में कई जगहों पर हल्की बारिश का अनुमान। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम मिडनाइट मेलोडीज का टाइम। यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, है एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं, वो किसी और को चाहती है।

0: si Terry Bully.
1: आए हाय,
0: तेरे तेरे छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय उजला है प्रातः के 4:25। आइए आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की। भारत ने पश्चिम एशिया के बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल कुवैत के विदेश मंत्री शेख जर्रा जाबेर अल अहमद अल सबाह से मुलाकात की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के क्षेत्रीय प्रभावों पर चर्चा की। नई दिल्ली में भारत और म्यांमार के बीच 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय बैठक हुई। संगठित अपराधों से मिलकर निपटने पर चर्चा की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफगानिस्तान के कृषि सिंचाई और पशुपालन मंत्री मौलवी अताउल्ला ओमारी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। विभिन्न कार्यक्रमों सहित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अगरतला में त्रिपुरा व्यापार सम्मेलन 2026 में शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान जताया कि भारत इस वर्ष 7% की वृद्धि दर के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की अंडर

तेईस महिला मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन, 9 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्के किए। विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्टा कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया। दिल्ली में आज बादल छाए रहने की संभावना, सुबह और दोपहर में कई जगहों पर हल्की बारिश का अनुमान। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय उचला है हमारे अगले प्रोग्राम सारेगामा का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी

की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।